सेव्ये अनिसहज सुबाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिवधिक समधि नुरार सो कुर सो चतिये तुर दिते सच पातशा मर जन्म जन